तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा में कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुम्हारा सूत्र तारी तुम ते हो सो आज्ञाकारी तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर क्या गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुरते अमरदास रामदासा होई सहाए अर्जन हर गोबिंद नू सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याईया जिस डिठा सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करण उन दयावा पाए सब थाई होए सहाए। दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज सब थाई होए सहाए। दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पितर पाठ दी दार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिन्हां प्यारियां सच्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लोहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संग नभाई तेरे पाणी नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां प्राचीन ते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्तर कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रशिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पितर दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। हे नमाणिया दे माण सतगुरु ने ताणिया दे ताण सतगुरु गरीब नू आज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह आप जी दे पितर चरणा अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना की जाती आप जी का पितर हुक्म है जेहा चीरी लिखिया तेहा हुक्म कमाए कले आवे नानका सदे उठी जाए दे मां वाका अनुसार आप जी दे दर घर दे सेवादार सरदार जोगिंद्र पाल सिंह लांबा आप जी वालों सुवासां दी पूंजी लैके जो मात लोक ते आए सन शहनशाह आप जी वालों बख्शी हुई सुवासां दी पूंजी नूं भोगदिया होया कुछ दिन पहला परलोक गमन कर गए तिन्हां दे परिवार वालों उन्हां दा दास संस्कार करन तों बाद गुरु घर विच अलाणियां दे पाठ करवाए गए आनंद साहब जी दे पाठ करवाए गए समूह संगत दी और उन्हां दी धर्म पत्नी बीबी इंद्रजीत कौर लांबा बेटा करण सिंह लांबा बेटी नेहा लांबा और उन्हां दे दोस्त मित्र जोगिंदर सिंह लांबा दे नां दी बेनती संगत रूप अंदर आप दे पितर चरणा विच करदे हन सच्चे पातशाह मृतक प्राणी कोलों संसार विच विचरदियां जाने अनजाने विच कोई गलती हो गई होवे खिमा कर देना पढ़ी सुनी बाणी दा भाव विछड़ चुकी आत्मा नूं बचाउणा आवागमन दे चक्करां चों बचा के रखना टेढ़ियां जूनां तों बचाउणा सदीवी काल लई सच्चे पातशाह अपने चरणा विच निवास बख्शिश करना परिवार नूं सज्जणा मित्रां नूं भैण भाईआं नूं पाणा मन दा बल बख्शिश करना हौसला देना गरीब नवाज सच्चे पातशाह उन्हां दी मिठी प्यारी याद विच अनिल बेरी जी और इस तरह भैन जी देसी जरा जुराओं वालों
ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਤਰ ਚਰਣਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀ ਆਪਦੇ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जो उपद्यो सो बिनस है परो आज कै काल नानक हर गुण गाए शाड सगल जंजाल राणा राव न को रहै रंग न तोंग फकीर वारी आपो अपनी कोय न बंधै तीर वारी आपो अपनी कोय न बंधै तीर सो कहो टल गुर सेविया अहणस सहज सुपाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला नौवां मन की मन ही माहे रही ना हर भजे न तीर्थ सेवे चोटी काल गही मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत तन पूरन सब मही अवर सगल मिथ्याए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहां नहीं हिरत हिरत बहुते जुग हार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहां नहीं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जुगो जुग अटल गरीब नूं आज गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पित्र हजूरी विच शरीर करके साथों सदा वास्ते विछड़ चुके सरदार जोगिंद्रपाल सिंह जी दे निमित दास संस्कार तो बाद अरदास विच शामिल होण वास्ते आए उन्हां दे परिवार दे मैंबर उन्हां दे धर्म पत्नी बीबी इंद्रजीत कौर जी लांबा बेटा सरदार करण सिंह लांबा बेटी नेहा होर सज्जन सनेही भैन भाई सारिआं वल्लों मिल के अरदास कीती गई सच्चे पातशाह विछड़ चुकी आत्मा कोलों जिंदगी विच विचरदिआं राए बराए जाने अणजाणे को गलती हो गई होवे पातशाह बख्श देना तुसीं सर्व कला समर्थ जदों कोई प्राणी घरों चलिया जांदा एकदम ते परिवार उत्ते विपता दे पहाड़ डिग पैंदे किवें सिस्टम चलेगा की बनेगा कई तरह दीआं विचारां परिवार दे मैंबरां दे दिलां विच आउंदीआं पर ये गल पक्की है भी इस धरती ते कोई भी सदीवी काल लई नहीं रहा जदों मनुख इस संसार ते अकाल पुरख वाहिगुरू दे हुक्म नाल आउंदा पहला उहदे मरण की तरीक नीयत की जाती है कि इनू वापस इन्नी तरीक नू बुलाया जाएगा पर बुलाया किस तरीके ना जाना है वह दुनिया के किसी बंदे नू नहीं पता किसी डॉक्टर नू नहीं पता किसी स्याने नू नहीं पता बाणी विचों असी पढ़ते हाँ मरन लिखाए मंडल में आए जिन्हें साह सतगुरु सानू बख्शदा उन्हें ही इस संसार ते भोगे जाते ने सो वाहिगुरू कृपा करन
ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਵੇਖੋ ਇਹ ਸਾਊਪਣੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਣਜ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥਣ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਘਟਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੱਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

जो लरा दीन के हेता पुरजा पुरजा काट मरा कब हूना शादा खेता गगंद मामा बाजियो परियो निशाने काओ खेत जो मांडियो सूरमा आप जूजन को दाओ कबीर जिस मरने ते जाग डरा मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईया पूरन परमानंद मरने ही ते पाईया पूरन परमानंद मानवता दे कल्याणकारी सर्वशक्तिमान पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पित्र हजूरी दे अंदर संध्या मौके हाजरी भर के सतगुरु जी का शुकराना करन वास्ते हाजिर होए सत संगी जनों आओ सरबत माई भाई मिलके सतगुरु पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह सांझी करिए। फतेह दे सिमरन विचों जिहड़ा बल बख्शिश करोगे उस बल दे द्रिए कथा विचार गुरु का पित्र इतिहास हर जस आप जी नाल सांझा करके सतगुरु जी की और आप जी की खुशी प्राप्त करनी चाहना। जिनी संगत गुरु की पित्र गोद विच

पहला गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंड जनक मोते धूप मल आण दो पवन शबरो करे सगल बन राय फूलां तो ज्योति कैसी आरती होए पाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ।

0: अपना नाम देवो,
1: अपना नाम माने हो, अपना
0: गुण गावा दिन रात, गुण गावा दिन रात, नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो,
1: नानक चाओ ए हो, नानक चाओ ए हो,
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

0: तीर्थ नावा जित सभावा विण पाणे के नाय करी
1: कर्मा के मिले
0: मात विच रतन जवाहर मानक जे एक गुर की।

0: स्वस्थ आत्मानी परमाओ सत सुहान सदा मचाओ
1: कवन सो वेला भगत कवन कवन सत कवन वार
0: कवन श्रुति मां कवन जितो आकार
1: वेल न पाईया।

0: ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड तिथे नाथ विनोद गोड आनंद
1: धर्म खंड की वाणी रूप तथा घाट घड़िया बहुत अनूप
0: कथिया
1: न जाए जे को कहे पिछे पछताए तथा घड़िया सुरत मात मन बुद्ध तथा घड़िया सुरां सदा की।

0: पाने नमो मन माने
1: नमो चंद्र चंद्र नमो पान पाने
0: नमो गीत गीते नमो तान ताने
1: नमो नृत नृत नमो नाद नादे
0: नमो पान पाने नमो बाद बादे
1: भलंगी अनामे समस्ती स्वरूपे
0: परभंगी पर माथे समस्ती विभूते
1: कलंकन बिनाने कलंकी स्वरूपे
0: नमो राज राजेश्वर परम रूपे
1: नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे
0: नमो राज राजेश्वर परम बिरदे।

0: समस्त निवासी
1: सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्ध कर्ता
0: अधो ऊर्ध अर्धन अंग उहलता
1: परं परं परमेश्वरं प्रोच पालन
0: सदा सर्वदा सिद्धदाता दयाल
1: अछेदी अपेदी अनामंग कामं
0: समस्तो पराजी समस्तस्त राम
1: तेरा जोर चाचरी छन जले हैं थले हैं बीत हैं अबे हैं
0: प्रभु है अजू है अदेश है अपेश है
1: भुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे
0: नमो सर्व माने समस्ति निदाने
1: नमस्तुं निर्नाथे नमस्तुं परमाथे
0: नमस्तुं अगंजे नमस्तुं अपंजे
1: नमस्तुं अकाले नमस्तुं अपाले
0: नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे
1: नमो राज राजे नमो साज साजे
0: नमो साह साहे नमो माह माये
1: नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते
0: नमो रोख रोखे नमो सुख सुखे
1: नमो सर्व रोगे नमो सर्व पोगे
0: नमो सर्व जीतन नमो सर्व पीतन
1: नमो सर्व ज्ञान नमो परम तान
0: नमो सर्व मंत्र नमो सर्व जंत्र
1: नमो सर्व दृसंग नमो सर्व कृसंग
0: नमो सर्व रंगे त्रिभंगी अनंगे
1: नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे
0: अखीजे अपीजे।

0: हरिकुत स्वरूप है, तर मुकुत अभिभूत है,
1: प्रभुगत प्रभा है, सुजुगत सुधा है,
0: सुदैवन स्वरूप है, अपेदी अनूप है,
1: समस्त पराज है, सदा सर्व साज है,
0: समस्त सलाम है, सदैव अकाम है,
1: स्वरूप है, गाद है, अनूप है,
0: उन आद रूपे अनाद स्वरूपे,
1: अनंगी अनामे त्रिभंगी त्रिकामे,
0: त्रिभंगन त्रिपादे अगंजे अगादे,
1: सुगन सर्व पागे सो सर्व अनुरागे,
0: त्रिभुगत स्वरूप है, अचिज है, अछूत है,
1: नरकम प्रणास है, पृथ्वी उर्प्रवास है,
0: निरुपगत प्रभा है, सदैवन सदा है,
1: विपुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है,
0: निरुपगत सदा है, विपुगत प्रभा है,
1: अनुगत स्वरूप है, प्रजुगत अनूप है,
0: चाचरी छंद अपांग है,

0: सर्वं हन्ता सर्वं गन्ता
1: सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता
1: सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं
0: सर्वं कर्मं सर्वं तर्पणं
1: सर्वं जुक्ता सर्वं मुक्ता
0: रसावल चांत्र प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे
1: अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते
0: परमाथन परमाते सदा सर्वसाथे।

0: साकन सरी खे अमितो अमी खे
1: सदैव प्रभा है जय है जा है
0: भगवती चंद्र प्रसाद
2: के जाहर
1: जहूर
2: है के हाजर हजूर
1: है हमें सलाम है समस्त उल कलाम है
2: साहेब दिमाग है के हुसन अल चराग है
1: के कामल करीम है के राजक रहीम है
2: रोजीद हिंद है के राजक रहिंद है
1: करीम उल कमाल है के हुसन अल जमाल है
2: गनीम उल हिराज है गरीब उल निवाज है
1: हरीफ उल शिकन है रासुल फिकन है
2: कलंकन प्रणास है समस्त उल निवास है
1: अगंजुल गनीम है रजाइक रहीम है
2: समस्त उल जुबान है के साहेब के राह है
1: के नकम प्रणास है बहसुल निवास है
2: सरबुल गवन है हमेशुल रवन है
1: तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है
2: परम परमीस है समस्तुल अदीस है
1: अदेशुल अलिक है हमेशुल अपेक है
2: जमीनुल जमा है अमीकुल इमा है
1: करीमुल कमाल है के जुर्रत जमाल है
2: जलन प्रकाश है की अमितो सुभाष है
1: के अजब स्वरूप है की अमितो विभूत है
2: अमितो बसा है की आत्म प्रभा है
1: के अचलंग अनंग है की अमितो अपंग है
2: मधुपाषण प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम
1: हर भर गंज हर नर प्रभंज
2: अन गण प्रणाम मुन मन सलाम
1: हर नर अखंड पर नर अमंड
2: अन पवनास मुन मन प्रकाश
1: गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम
2: अंचिज अंग आसन भंग
1: उपमा अपार गर्मित उदार
2: जल थल मंड दिस विष पंड
1: जल

0: कल कारण है सर्व कारण है
1: जग के करण है
0: मन माने है जग जाने है
1: सर्वन पर है सर्वन कर है
0: सब पासे है सब नासे है जगतेश्वर है
1: मंडस है खल खंडस है
0: पते पर है करुणा कर है
1: जपा जप है थपा थप है
0: अकृता कृत है अमृता मृत है
1: अमृता मृत है करुणा कृत है
0: अकृता कृत है तरणी कृत है
1: विद्येश्वर है पर

0: अकर्मण अपरमण अगंजे अलेके अगंजुल नामे समस्तुल निवासे कुकर्मण प्रणासी सुधर्मन विभूते
1: सदा सच्चिदानंद सत्रन प्रणासी
0: करीमो कुलिंदा समस्तुल निवासी
1: गजाय विभूते गजाय गनी में
0: हरियन करियन करीमुल हरी में
1: चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भोगते
0: स्वयं भव

प्रसाद स्वयं एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं श्रावक सुत समो सिद्धांत के देख फिर कर जोग जति के।

0: संग अनूप तंग सुरंग सवारे
1: कोटु रंग कुरंग से कूदत पौन के गुण को जात निवारे
0: पारी पुजान के पूप बलि बिदनावत सीस न जात बिचारे
1: इते पै तो कहां पै पूपत अंत को नांग ही पाए पतारे
0: जीत फिर सब देश देसान को बाज टोर मृदंग नगारे
1: गूंजत गुण ग जान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे
0: पवित्र पवान के पूपत कौन गने नहीं जात बिचारे
1: श्रीपत श्री भगवान पर

0: जति जद्दार सब सुविचार हजार क देखे
1: श्री भगवान पजे बिन कूपत एक रति बिन एक न लिखे
0: सत सबात रंद बासो सात सना दुर्जान दलेंगे
1: भारी गुमान परे मन में कर पर्वत पंख हले न हलेंगे
0: दोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे
1: श्रीपद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे
0: वीर पार बड़े बरे अरब चार सार की तार पछैया
1: दूर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया
0: गाड़े गड़ान के तोड़न हार सो बातन ही चक चार लवैया
1: साहिब श्री सब को सर नायक जाचित ने सो एक दिवैया
0: दानव देव फनिन साचर पूत पवेक पवा

0: ब्रह्म हे सर बिसन सचीपत सचीपत अंत फसे जम फास परेंगे।
1: जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फेर ना दे तरेंगे।
0: कहा पे जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बग ध्यान लगायो।
1: नाथ फ्रियो लिए सात समुद्रन लोक गयो पर लोक वायो।
0: पास कियो विख्यान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बितायो।

0: सतगुर मिले तिब दृष्टि होई।
1: ए स्वर्ण मेरे ओ साचे सुनने न पठाए,
0: साचे सुनने न पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी।
1: जित सुनी मन तन हरिया हो आरसना रस माणी।

0: मन जैसे शुक्र स्वान नानक मानो तहे तन
1: स्वामी को गृह जो सदा स्वान तजत नहीं ने।

तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम कृपा में कोई न जाने तुम्हारा अंत ऊंचे ते ऊंचा सगल समगरी तुम्हारे सूतर तारी तुम ते हो सो आज्ञा तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास तुम्हारी गात मित तुम ही जानी नानक दास सदा अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ते आए फिरंगत गुरते अमरदास रामदासा होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हराए श्री हर कृष्ण ते आइया जिस जिठा सब दुख जाए देख बहादुर सिमरिया करना उन दे आवै ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पितर पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई ते गवाही देख के आनंदित कीता तिन्हां प्यारियां सत्यारियां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीह दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरिया नाल चराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां स्वासां संघ नभाई तेरे बाणे नूं मिठा करके मन्निया तिन्हां प्राचीन ते वर्तमान समें दे समूह शहीदां दी पित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां गुरधामां दी कमाई का ध्यान धर के बोलो जी प्रथमै सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चेतावै चेतावन का सदका सर्व सुख होए जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रशिया रियायत देख देख फतेह बिरद की पैज पंथ की जी श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहब जी दे पितर दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी आप जी दे सिखां दा मन नीवा मत उची मत पद दा राखा आप अकाल पुरख वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दतार जीओ श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारे गुरधाम जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया तिन्हां दे खुले दर्शन दीदार सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शिश करो जी हे नमाणियां दे मान सतगुरु नेताणियां दे तान सतगुरु गरीब नवाज गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज आप जी दे पावन चरणां च अरदास बेनती कीती जांदी है महाराज आप जी दी महान कृपा दे सदका आप जी दी पित्र हजूरी अंदर अमृत वेले दे सुंदर दीवान सजे सजे होए दीवाना विच संगती रूप अंदर पंज बाणियां दे नित नेम होए नौवें पातशाह जी दे सलोक पढ़े गए होर संगत वल्लों बाणी पढ़ी गई पातशाह आप जी दी अगाध बोध बाणी पढ़दियां बहुत सारियां गलतियां भुल्लां हो जांदियां ने अनजाण बच्चे समझ के माफ कर देना अगाह वास्ते शुद्ध बाणी पढ़न का बल बख्शना पढ़ी सुनी बाणी का भाव धाराइयां संगतां दे हिरदयां विच वसाउणा अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शिश करके नवाजना सतगुरु अमृत वेले बेअंत संगत आप दे चरण परसन लई आ रही है कदम लेखे चलाउणे सेवावां पिटावां रस्तां अपने चरणां च दर प्रवान करनियां समूह टहलीए सेवादारां दे सिर ते मेहर भरे हथ रख के अपने दर घर दी सेवा सतगुरु जी आप प्राप्त करदे रहना सतगुरु जी आप जी दे दर कर दे सेवादार सरदार जसपाल सिंह भैन जी दविंदर कौर जी वालों अपने दोते जपवीर सिंह दे जन्मदिन की खुशी अंदर सतगुरु आप का शुकराना किया जा रहा पातशाह जपवीर सिंह दे सर ते मेहर भरिया हथ रखना तंदुरुस्ती दात बख्शिश करनी दीर आरजू कारोबार में तरक्की माता पिता के सिर ते मेहर भरिया हथ रखना आसा बेनतियां प्रवान करनिया दुखा कलेसा का सतगुरु जी नाश करना सरबत्त दे कारज राज करने
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਪੰਚਮ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਖ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜੋ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਦਰ ਆਵੇ ਸੋ ਰਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਆਪ ਦਾ ਪਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਪਹੀਆ ਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲਬੋਚ ਹੈ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆਕੀ ਰਹਿਣਾ।

गुरमुख बिरले जाने। ये पंक्ति जिस सारे शब्द का केंद्रीय भाव है, भगत जी दसते हैं कि जो मनुख अपने आप नूं गुरु के हवाले करके नाम सिमरदा है